कोई कर्म कांडा विच पिया, कोई जोगिया दे पिछे पिया, कोई सिद्धां दे मगर लगिया है। परमेश्वर दा नाम सारिया नू विसर गया सी, पाप विच रुझिया होया संसार, ते जदो अपने बढ़ाए हुए संसार दी ए हालत वेखी निरंकार ने, के मेरी बनाई हुई सृष्टि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईरखा द्वेष दी अग विच जल रही है, ता निरंकार ने गुरु नानक दा रूप बनाया, गुरु नानक दा रूप तार के संसार ते जगत जिया नू तारन वास्ते आ गया।

खेत विच वड़ गई हां और जाके सारी खेती नू खा लिया और कुछ पैरां तले खराब कर दिता। साहब जी अडोल समाधि विच बैठे जदों खेत दा मालक आया की वेख्या एक बालक बैठा है समाध धार के ते गाइयां मजियां सारे खेत विच

राय जी ने पछाण लिया ए ता मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवे क्यों कीता? आख्या मैं ता उस प्रभु दे रंग विच बैठा सा, मेनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया। मेहता जी जदों आए राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां आ दूजे दे खेत विच छड के सारा खलियान खेत खराब कर दिता। एदा हरजाना पर भई तेरा पुत्र है ना नानक। मेहता कालू कहन लगा ए ता है ही निखट्टू, कोई कम कार नहीं करदा, वेले बैठा रहंदा। एक काम इस नू करन वास्ते भेजिया सी, ओ भी उजाड़ के आ गया। क्यों नानक इवें क्यों कीता? मेहता कालू ने जदों पुछया ते गुरु नानक सच्चे पातशाह बाल अवस्था विच कहन लगे पिता जी इदे खेत नू तां कुछ होया ही नहीं, ए इवें आके इत्थे शिकायत करन आ गया। इदी खेती नू कुछ नहीं होया, इदी खेती तां उसे तरह लहलहा रही है। सतसंगत बोलो श्री हरी भरी है। ओ कहिंदे नहीं मैं अपनी अखां नाल वेख के आया, चलो मेरे नाल। ते सारे जदों कठे होके उत्थे पहुंचे, प्यारी सतसंगत जी गुरु नानक दी ऐसी करनी ऐसी वडियाई वरती, ओ जेड़ी खेती सारी उजड़ गई सी, ओ खेती सारी दोबारा लै लहा रही है। कोई कहिंदा नहीं के इत्थे गाइयां मजियां आईयां भी कोई नहीं। उन्हें क्या मैं आप खुर तके हन गाइयां मजियां दे।

मोदी खाना ले दिता, आखिया इथे बैठ के हुण दुकान करेगा ता इसका चित दुकान विच लग जाए। साहब जी दुकान ते बैठ गए, किरयाने दी दुकान है, जो कोई लोड़वंद आउंदा है चोली अगे करदा है, गुरु नानक ओदी चोली भर देंदा है। एक दो तीन चार पांच जिहड़ा आई जा

कितनी देर हो गई बाहर ही नहीं निकल रहा। सिपाही जयराम घबराया, बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गए। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी, परोसे वाली सी, कहन लगी इवे ना आखो, मेरा नानक संसार विच डूबन वास्ते नहीं आया, ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा, ओदा जरूर कोई कौतक होवेगा, कम होवेगा, किसे कम नूं गया होवेगा, ओ जरूर आवेगा। और समा पा के जदों निरंकार दे कोलों उपदेश लै के गुरु नानक सच्चे पातशाह वेई विचों निकले, इत्थे सारे उदास बैठे हन के गुरु नानक वेई विच डूब गया, लेकिन बेबे नानकी नूं पता है मेरा वीर संसार नूं तारन वाला है, वो कदे डूब नहीं सकदा। ताई सारे उदास बैठे ते बुआ खड़किया, आवाज आई बेबे करतार चित आवे, उठी वजी बेबे नानकी, मेरा वीर आ गया। जां बुआ खोलिया गुरु

हरिद्वार जा पहुंचे। हरिद्वार दी जदों पवित्र धरती ते पहुंचे ते की वेख्या उत्थे दे लोग कर्म कांड

आख्या इस पासे मेरे खेत हन करतारपुर विच, मैं उना नू पानी पा रही खेती नू। पंडित कहन लगा कितनी कु दूर है? आख्या कोई 400-500 मील होना इथो। आख्या तुहाडा एक लोटा पाया पानी ओ खेतां तक पहुंच जावेगा। साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक

सारी उम्र छोटे छोटे लाभां नूं वेखदे रहने। भाई बड़ा कुछ कमा के बड़ा कुछ पा के चीज की समझ आंदी है कि रब दे नाम तुल कुछ नहीं है। जेड़े मेरे वर्गा कोई गरीब फकीर होवे उह सारी उम्र नस्सा फिरदा है दौलत दे मगर, पर जेड़ा बहुत कमाई कर लवे ओनू फिर यह पता लगता है कि सब तो वड्डा जो है रब दा नाम है। कबीर साहब कहंदे हन, होछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लियो मैला।

परमेश्वर आप हुआ रखवाला, परमेश्वर आप हुआ रखवाला। शांत सहज सुख खिन मह उपजे।

ते जन कब होना हारे। ताल जो जाने पाशा, ताल जो जाने पाशा, ते जन कब होना हारे।

और जंजार जितो ग्रह को तोहे त्याग कहाँ चितता मैं धरो अब रीत के देहो वह हमको जब बेनती कर जोर करो जब आपकी आग निदान बढ़े।

आन को दान न लागत नीको, आन को दान न लागत नीको, आज भले इन्हीं को दियो, आज भले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और

जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सदा निकले, आज आग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन ताम भरे, इन्हीं की कृपा फुन ताम परे, इन्हीं के प्रसाद को विद्यालय, इन्हीं के प्रसाद को विद्यालय, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे।

आप सो जो जाने नीचा सौ गणिए सब ते ऊंचा। अपने आप जेड़ा नीवा बना के गरीब बना के रखे वागुरु वालों उन्हों दात किन्नी मिलती है एदा प्रमाण भाई गुरदास जी देंदे अपनी बाणी अंदर कहिंदे दाना होए अनार दा। अनार दा दाना अपने आप नू निम्रता विच उसने अपने वजूद नू निम्रता लिया के मिट्टी च रोलिया इन्ना गरीब बन गया मिट्टी च रुल गया। वाहगुरु ने उस नू दात बख्शी भाग लाए भाई गुरदास साहब की बाणी दाना होए अनार दा होए धूड़ तूड़ी विच तसे फिर होए बिरख हरियावला हरियावला बिरख बन गया लाल गुलाला फुल विगसे एक बिरख सैस फल फुल फल दे मन अंदर वसे एक दू दाने लख होए एक दू दाने लख होए फुल फल एक दू एक सरसे ज्यों ज्यों लइण तोड़ फल त्यों त्यों फिर फलिए हसे निव चलन गुरु मार्ग दसे निव चलन गुरु मार्ग दसे होए वड़ेवां जग विच वड़ेवें दा बीज उसका प्रमाण देंदे होए भाई गुरदास कहंदे होए वड़ेवां जग विच खे नाल रलाया वड़ेवें दे बीज ने अपना तन मिट्टी च रोलिया की होया होए वड़ेवां जग विच बीजे तन खे नाल रलाया बूटी हो कपाह दी बूटी बन गया टींडे हस हस आप खिड़ाया। इथे ही बस नहीं अगे इम्तिहान होर पै गया दो मिल वेलन वेलिया वेलने विच भी वेलिया गया वड़ेवां दो मिल वेलन वेलिया लू लू कर तुंब तंबाया तिंजन पिंज उड़ाया तिंजन पिंज उड़ाया कर कर गोरी सूत कटाया तन तन खुंब चढ़ाए दे दे दुख तुआए रंगाया फिर कैंची कट्टन कट्टिया फिर सूई धागे जोड़ सवाया लज्जन कज्जन होए कजाया। ए रुमाल बनके गुरु ग्रंथ साहब जी दे सुभायमान हो देखो किड्डा वड्डा भाग गुरसिख दे सीस ते दस्तार बनके सज गया क्यों इस तरह बाबा दीप सिंह ने अपने आप नू साध संगत जी एने निम्रता विच लै गए कहिंदे पुरजा पुरजा कस मरे कब हुन छाके जाता प्रेम खेलन का सिर धर तली गली मार्ग पैर धरी के फिर दीजे कान न छके

सलल निवास जैसे मीर की ना घटे रुच, सलल निवास जैसे मीर की ना घटे रुच, दीपक प्रदास कटे प्रीत ना पतंग की, उस समास जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश आस कटे ना बिहंग की, कटाक्षण को

क्योंकि मैनू ये यकीन है कि जदों तू मैनू अपना बनावेगा ते मैनू निवाजेगा, मैनू मान बख्शेगा। मैं तेरे दर से आके तेरे अगे पुकार करदा हां कि कृपा कर मैनू अपना।

मित्र कुटुंब तन पवन मम ए मेरे मित्र मेरा कुटुंब ए तन रहण वास्ते सोने पवन समृद्ध कहंदे ने सगल समग्री ए मेरा कुटुंब मेरे मित्र तन दौलत रहण वास्ते घर ये सारी जिहड़ी समग्री है कृपा करतास खालसे ने मेरे ते कृपा करके ये सब कुछ मैनू दिता। सत्संग धन है गुरु गोबिंद सिंह महाराज है ने गुरु नानक दा रूप पर जे निम्रता वल जाइए ते कित्थे तक जा पहुंचे ने कि सारा कुछ खालसे ने कृपा करके मैनू दिता है। कवि सुंदरदास जेड़े आनंदपुर साहब रहा करते सन वो कहंदा मैं आनंदपुर साहब रह के देखे है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का दरबार कि जिन्हां राजिया महाराजिया मिलना बड़ा औखा है जिन्हां राजिया महाराजिया की एक झलक देखनी बड़ी औखी है उन्हां राजिया महाराजिया मैं गुरु गोबिंद सिंह के दरबार से दरबान बन के पहरेदार बन के खलोते देखे वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिदे दर से वड़े वड़े राजे महाराजे आके झुकते ने ओ गुरु इतनी निम्रता इस निम्रता विच आके कह रहे ने कि मेरा कुटुंब मेरे मित्र तन रहण वास्ते घर सब कुछ खालसे ने कृपा कर